0: आशिक कर है ना
1: है जब साथ में है दिल पर आजा मेरी बाहों में सो जा रख के सर
2: जंगल है आधी रात
3: रानी देख राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है

0: पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा